0: बरस के इंतजार कितना झिल मिल रिम झिम बरसता सावन हो
1: पुल अप द शूज लेट मी गिव समबडी इट पुल अप द शूज लेट मी गिव समबडी इट
0: आंगन होगा रिम झिम बरसता सावन हो
2: ऋषि मोहन एंड आई गेट बाय आरती द सॉन्ग माय गर्लफ्रेंड बाय आबाई बे बालव्या

0: रणवीर सिंह।
1: तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे,
0: तेरे मेरे मिलन में,
1: तेरे बिना,
0: तेरे मेरे बिना, मैं आऊंगी बना, तेरे मेरे मिलन की, मैं आऊंगी बना वन, I'm not sharing it with nobody.